0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2: समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @airnewsgarsyang अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब रल समाचार। वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले भारत र क्यानाडा बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी सम्झौताको वार्तालाई गति दिन हिज क्यानाडाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री मनिन्दर सिद्धुसँग भेट गर्नुभयो। दुवै पक्षले वार्तालाई द्रुत गति दिने र सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याए। विस्तृत आर्थिक साझेदारी सम्झौताले वस्तु र सेवाहरूको व्यापार, लगानी र आर्थिक सहयोगका अन्य क्षेत्रहरूमा नयाँ अवसरहरू सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारत स्वेडिस चेम्बर अफ कमर्सको नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 40 अधिक विश्व बजारमा व्यापारिक सुगमताको मामिलामा पहिलो स्थानमा रहेको छ। वाणिज्य र उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले एक सोसियल मिडिया पोस्टमा यो जानकारी साझा गर्नुभयो। उहाँले भारतको व्यावसायिक वातावरणले विश्वव्यापी अस्थिरताको बीचमा स्थिरता, वृद्धि र व्यापार गर्न सजिलो हुने नयाँ मानक स्थापित गरेको बताउनुभयो। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 41 बजारहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ। यस सर्वेक्षणले विदेशमा व्यापार गर्ने बारेमा स्विडेनी कम्पनीहरूको अनुभव र दृष्टिकोणलाई बाहिर ल्याउँदछ। पर्यावरण वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले हिजो उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग नोएडा, हापुर, गजियाबाद, मेरठ र बुलन्दसहर सहित राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रसँग जोडिएका राज्यका 8 सीमावर्ती जिल्लाहरूमा वायुको गुणस्तर सुधार गर्न उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक गर्नुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोलाई व्हाइट हाउसमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्नुभयो। एक सोसियल मिडिया पोस्ट गर्दै उहाँले यी मिडिया संस्थाहरूले लगातार आफ्नो प्रशासनको बारेमा गलत वा काल्पनिक समाचार प्रकाशित गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो भने आगामी समयमा अन्य मिडिया संस्थाहरूमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाउन सकिने सङ्केत दिनुभयो। यस निर्णय विरुद्ध सम्बन्धित मिडिया हाउस र प्रेस स्वतन्त्रता सङ्गठनहरूले कानुनी चुनौती दिने सम्भावना रहेको छ। विश्व एसियाली खेलकुद आजदेखि जापानको आइची नागोयामा सुरु हुँदैछ। उद्घाटन समारोहमा ओलम्पिक पदक विजेता मनु भाकर र एसियाली खेलकुदका सटपुट च्याम्पियन ताजिन्दर पाल सिंह तुर भारतीय ध्वजवाहक हुनेछन्। मनु भाकरले 2024 पेरिस ओलम्पिकमा 2 पदक जितेर इतिहास रचेकी थिइन्। ताजिन्दर पालले सन् 2018 जकार्ता र 2022 हाङजाउ एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जितेका थिए। यो समाचार युट्युबमा @airkarsyang मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज नयाँ दिल्लीमा पर्यावरण र जलवायु प्रतिशीलताको भविष्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। वर्ष 2025-26 भारतको सफ्टवेयर सेवाको निर्यात वार्षिक आधारमा 8.2% बढेर $221 अरब अधिक पुगेको छ। वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले हिजो क्यानाडाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री मनिन्दर सिद्धुसँग भेट गर्नुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोलाई व्हाइट हाउसमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्नुभयो अनि विश्व एसियाली खेलकुद आजदेखि जापानको आइची नागोयामा सुरु हुँदैछ। आकाशवाणीबाट समाचार पुरा भयो। 9 बजी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणी।

0: विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुखपृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलिनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More details from our correspondent.
3: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है।

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े, देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मौजूद हैं। वे सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने इस संशोधन को 9 सितंबर को अधिसूचित किया था, जिसे शुक्रवार को प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय परिषद आदेश 1990 में बदलाव किया गया है। इसी आदेश के अंतर्गत परिषद का गठन किया गया था। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडन की कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के जरिए विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लाने वाली कंपनियों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में $1,00,000 का शुल्क

लगाए जाने के बाद आईटी कंपनियों की H-1B वीजा पंजीकरण में 92% की कमी आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शुल्क की अवधि बढ़ाने से अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा होगी तथा अमेरिकी कर्मचारियों और स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। H-1B वीजा का लाभ पाने वाले में भारतीय नागरिकों का समूह सबसे बड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत रूस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया गया है और उसे तेल और गैस के प्रमुख खरीदार देशों पर 100% तक शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ईरान पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को भी 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जुबिन गर्ग का निधन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुआ था। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमो मिजुनो स्टेडियम में होगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तंजिंदर पाल सिंह तोर उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेछौँ। समय 11:05 भयो। श्रोतालाई अब सुनाइरहेछौँ कार्यक्रम अजम्बरी गीतहरू।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आवाहन भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के

हवाई प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैर कानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आईची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े, देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
2: रहना है तेरे दिल में, यस फिल्मबाट अब सुन्नुहोस् बम्बई जयश्रीको आवाज।

0: platform ban raha hai.
1: Prime Minister Modi said that India is rapidly working in areas like clean mobility and green hydrogen today. He highlighted that India's wind energy capacity has witnessed 3 times growth in the last 12 years. Mr. Modi emphasized that New India is also focusing on nuclear energy generation. On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said that the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. He underlined the importance of the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It has also brought together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youths will be trained by 31st of December next year. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years of public service, marked by an unwavering commitment to the principle of seva and sushasan. Inspired by this vision of service and good governance, the government is continuously working towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. Several initiatives have been undertaken to connect the youth with nation building and provide them with opportunities to serve the country. One such initiative is the Agnipath scheme. In this special series, we look at the opportunities being provided to the youth through the Agnipath scheme. More from our correspondent.
2: The government launched the Agnipath scheme in 2022 to provide young people with an opportunity to serve the nation. Under the scheme, youth inducted into the armed forces are known as Agniveers. Agniveers serve for 4 years, during which they receive military training and gain experience in discipline and various skills. Uttarakhand has a strong military tradition, with its youth playing an important role in serving the armed forces. Young people from the state are also participating in the recruitment process under the Agnipath scheme. A large number of candidates participated in the Agniveer recruitment rally held at Banbasa in Champawat in February and March this year. After completing 4 years of service, up to 25% of each batch of Agniveers will be inducted into the regular cadre of the armed forces through the prescribed process. The remaining Agniveers are provided a Seva Nidhi package and a skill certificate. In Uttarakhand, a 10% horizontal reservation has been provided for ex-Agniveers in various uniformed Group C services under rules issued in 2025. These include posts in the police, fire services, prisons, forests, excise and secretariat security. Subject to the prescribed condition, ex-Agniveers are also provided relaxation in the upper age limit and exemption from the physical efficiency test. Thus, the Agnipath scheme is providing young people with an opportunity to serve the nation while gaining military training and experience. While Uttarakhand has also made provisions for employment opportunities for them after their service. Santosh Thapliyal, Akashwani News, Dehradun.
1: This is Akashwani giving you the news.
3: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
1: Welcome back to Midday News on Akashwani. India has dispatched another 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India continues to support Nepal's recovery. Nepal faced devastating floods last month, disrupting life and property. United Nations experts have warned Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, calling for authorities to assess whether individuals face risks of persecution, torture or other serious human rights violations before their removal. The experts also raised concerns over a directive requiring medical and dental institutions in Pakistan to remove Afghan students. At least 100 Afghan students, including 20 to 40 women, are reportedly affected. They said the move could end the hopes of female Afghan students of qualifying as doctors and dentists, given the Taliban's ban on higher education and medical training for women. Assam is remembering the iconic singer, composer and cultural figure Zubin Garg on his first death anniversary today. Various events and programs are being organized across the state to pay tribute to the artist, whose music continues to resonate with millions of people. The state has also been observing a three-day Zubin Divas since 17th of September. Thousands of admirers have gathered at Zubin Kshetra in Sonapur near Guwahati, where the legendary singer was cremated, to offer their respects and celebrate his enduring legacy. During his 33-year musical career, Zubin Garg recorded over 40,000 songs across nearly 40 languages and dialects, reflecting his remarkable versatility and wide appeal. On to sports. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. India time. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature five individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lavlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. The India Meteorological Department or IMD has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. Heavy to very heavy rainfall is also likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over the directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubin Garg on his death anniversary and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
0: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
4: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
4: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
4: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में कॉप 21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
4: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
5: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
6: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस,
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 357,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर

0: देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालुमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेछौँ एफएम 103.5 मेगाहर्जमा। समय अपराह्न 4 बजे। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम हिन्दी सिकौँ।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी कर्शियांग को सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मैं संचालिका सुरक्षित तामंग की ओर से अभिवादन। श्रोताओं, ये समय है आओ हिंदी सीखे कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष तौर पर हम हिंदी आभाषी छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी के बोल चाल ज्ञान आदि प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की शिक्षाप्रद कहानी का विषय है मेहनत का मूल्य और इस कथा को प्रस्तुत कर रही है निर्मला अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, हमारी आज की शिक्षाप्रद कहानी को सुनते हैं।
2: मेरे प्यारे नटखट पर समझदार बच्चों, आज हम फिर एक रोचक कहानी लेकर आप सभी के समक्ष आए हैं। लेकिन बच्चों, ध्यान से सुनना, आगे आप सभी के लिए ये कहानी बहुत ही काम आने वाली है। बच्चों, कहानी सुनने से पहले कुछ मौसम के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी को पता है, अभी तो बरसात का मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तेज हवा चलती है, बिजली कड़कती है, चारों ओर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कहीं जान माल की हानि हो रही है तो बेचारे बेजुबान पशु पक्षियों के विषय में

का मजा भी लेना है ना। और इतना ही नहीं, वार्षिक परीक्षा भी तो आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मेहनत का क्या मूल्य है उसे समझते हैं। मेरो प्यारो चकचके तरबुजा की नानी हरो, आज फेरि हामी एक रोचक कथा लिएर तिमी सबैहरूको समक्ष आएका छौं। तर बाबुहरू, यो कथालाई ध्यान दिएर सुन्ने है, कारण यो कथा तिमीहरूको जीवनमा उपयोगी सिद्ध हुनेछ। नानीहरू, यो कथा सुन्न अघि केही मौसमको विषयमा ज्ञान प्राप्त गरिहालौ है। तिमीहरू सबैलाई थाहा नै छ, अहिले बर्खाको मौसमले आफ्नो रौद्र रूप देखाइरहेको छ। ठुलो हुरी बतास अनि बिजुली चम्किने बेला हो। चारैतिर बाढको विपदा आइरहेको छ, जसले गर्दा जान मालको हानि भइरहेको छ। बिचारा अबोला पशु पक्षीहरूको विषयमा त के नै कुरा गर्नु। नेपालमा आएको भयानक त्रासदी सुनेर त हृदय नै काम्न थाल्छ। बाबुहरू, यस बर्खाको विपदाहरू माझ चारैतिर हरियो भरियो देखेर मन अत्यन्त रमाइलो हुन्छ। रातो, गुलाबी, निलो, पहेँलो रङ्गको फूलहरू देखेर मन हर्षित हुन्छ। बाबुहरू, बर्खाको मौसममा चारैतिर खाल्डोहरूमा पानी भरिन्छ, फलस्वरूप पानी दूषित हुँदै जान्छ अनि अनेकौं प्रकारको बिमारीहरूको खतरा बढ्दै जान्छ। त्यसर्थ तिमीहरू सबै सतर्क भएर आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान राख्नु पर्नेछ। आउँदो दिनमा अनेकौं चाडबाड तिहारहरूको मजा पनि त लिन बाँकी नै छ। यति मात्र होइन, ठुलो एक्जाम पनि आउन आँटेको छ। नानीहरू, अब कथातर्फ बढौं अनि परिश्रमको मूल्य के रहेछ बुझौं है। बच्चो, एक शहरमे एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसका नाम रोहित था, अपने परिवार के साथ अत्यंत सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में उसके पिता करमचंद, उसकी पत्नी सरिता और एक पुत्र रोहन थे। शहर में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान थी। एकमात्र संतान होने के कारण रोहन का जीवन बड़े लाड़ प्यार से कट रहा था। दादा और अपनी माँ का दुलारा रोहन जो कुछ भी चाहता उसे मिल जाता। पिता रोहित भी अपनी संतान की जिद को उसका बाल हट समझकर अनदेखा कर देते थे। पत्नी सरिता अपने पति को समझाती कि आखिर इसकी उम्र ही क्या है, जब समय आएगा तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझ जाएगा। दादाजी भी पोते का हर समय पक्षी लेते रहते। इसी प्रकार जीवन व्यतीत हो रहा था। रोहन की मांग कभी खत्म ही नहीं होती थी। जरूरत और बेजरूरत सभी चीजें उसे चाहिए होती थी। घर में भी उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। इसी कारण धीरे धीरे रोहन आराम तलब और आलसी होता चला गया। पिता रोहित को अपने बेटे की बहुत चिंता होती थी। रोहित जानता था कि यदि रोहन को धन कमाना नहीं आया तो उसके मरने के बाद वह व्यापार भी नहीं संभाल पाएगा और सारा धन खर्च करके कंगाल हो जाएगा और धन समाप्त होने के बाद वह भूखा मरेगा। नानीहरू, एउटा शहरमा एउटा अत्यंत धनी व्यक्ति जसको नाम रोहित थियो, जो आफ्नो परिवारसँग अत्यन्त सुखसँग आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेको थियो। उसको परिवारमा उसको पिता करमचन्द, उसको स्वास्नी सरिता अनि एउटा छोरो रोहित थियो। सहरमा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा उहाँको परिचय थियो। एकमात्र सन्तान हुनाले गर्दा रोहनको जीवन खुबै लाड प्यारसँग बितिरहेको थियो। बाजे अनि आफ्नी आमाको अति नै प्यारो रोहनले जे मागे पनि उसले झट्टै पाइहाल्थ्यो। बाबा रोहितले पनि नानीको जिद्दीपनालाई उसको बालहट सम्झेर छोडिदिन्थे। स्वास्नी सरिताले आफ्नो पतिलाई बुझाउने गर्थी कि अहिले नानीको उमेर कलिलै छ, जब समय आउँछ आफ्नो सबै जिम्मेदारी
आफै नै बुझ्

हाल्छ। बाजेले पनि नातिको पुरै पक्ष लिनु हुन्थ्यो। उसै गरी उनीहरूको जीवन बितिरहेको थियो। तर रोहनको मागहरूको केही अन्त नै थिएन। चाहिने होस् अथवा नचाहिने होस्, सबै जिनिसहरू उसलाई चाहि नै रहेको हुन्थ्यो। घरमा पनि उसले एउटा पनि काम गर्न पर्दैन थियो। त्यसैले गर्दा रोहन अल्छे अनि आराम खोज्ने नानी भइसकेको थियो। बुवा रोहितलाई त थाहा थियो कि यदि रोहनले धन कमाउन सिकेन भने उसको जीवनको अन्तपछि व्यापार पनि सम्हाल्न सक्ने छैन अनि सबै धन सम्पत्ति खर्च गरेर कङ्गाल भइहाल्छ। अनि भएको सबै धन साथै बाबुले कमाएको धन सम्पूर्ण रूपले नष्ट भएपछि ऊ आजीवन भोकै मर्नेछ। बच्चो, आगे की कहानी इस प्रकार है कि रोहित ने बहुत सोच समझकर एक उपाय सोचा कि रोहन को मेहनत का महत्व समझाना आवश्यक है, अन्यथा वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह रोहित ने रोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे आज मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। अपने बलबूते से शाम तक 500 रुपए कमा कर लेकर आओ। देखना चाहता हूँ तुम मुझे कितना प्यार करते हो। बेटे, रोहन को परिश्रम का अभ्यास नहीं था, उसे धन कमाना नहीं आता था, लेकिन अपने पिता से वो बहुत प्यार करता था। अपने पिता की बात सुनकर वह अपनी माँ के पास गया और उसने माँ को पिता की कही बात बताई और सलाह मांगी। माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो। माँ ने ममता बस 500 का नोट निकाल कर बेटे को दे दिया। रात को दुकान से लौटकर रोहित ने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटे आज तुमने मेरे लिए क्या कमाया? रोहित ने झट से 500 का नोट निकाल कर अपने पिता के सामने रख दिया। नानीहरू, अगाड़ी को कथा यस प्रकार छ कि रोहित ले निकै सोच विचार गरेर एउटा उपाय सोच्यो कि रोहनलाई परिश्रमको महत्व बुझाउन अत्यन्त आवश्यक छ, नत्र भए ऊ आफ्नो जीवनमा कहिले सफल हुने छैन। अर्को दिन बिहान बिहानै रोहितले रोहनलाई आफ्नो समीप बोलाएर भन्यो, छोरा आज म तिमीलाई एउटा काम सुम्पिँदैछु। तिमी आफ्नो मेहनतले बेलुकीसम्म 500 रुपियाँ कमाएर लिएर आऊ है। म हेर्न चाहन्छु कि तिमी मलाई कतिको माया गर्छौ। छोरा रोहनलाई मेहनत गर्ने कुनै पटक्कै पनि बानी थिएन, उसलाई अभ्यास पनि थिएन। उसलाई धन कसरी कमाइन्छ त्यसको विषयमा अत्तो पत्तो थिएन। तर बिचारा रोहनले आफ्नो बाबालाई औधि नै माया गर्थ्यो। आफ्नो बुवाको कुरा सुनेर ऊ त्यति नै बेला आफ्नी आमाको समीप गएर आफ्नो बुवासँग भएको सबै कुरा बताएर के गर्नु भनी आमाबाट सल्लाह माग्यो। आमाले भनिन्, छोरा सुर्ता नगर ल। आमाले ममतावश 500 को नोट निकालेर छोराको हातमा राखिदियो। बेलुकी पसलबाट फिर्केर रोहितले आफ्नो छोरालाई बोलायो अनि सोध्यो, छोरो आज तिमीले मेरो लागि के कमाएर ल्यायौ? रोहितले झट्ट 500 को नोट निकालेर आफ्नो बुवाको समक्ष राखिदियो। बच्चो, रोहित एक विद्वान व्यापारी था। उसने तुरंत भाप लिया कि यह रुपया रोहन ने नहीं कमाया है, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटे इसे ले जाकर अपने कुएं में फेंक आओ। रोहन आज्ञाकारी बच्चे की तरह गया और उस 500 के नोट को कुएं में डाल आया। पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु शयन कक्ष में रोहित ने अपनी पत्नी सरिता को सारी कहानी बताते हुए समझाया कि वह अपने बेटे के भविष्य के लिए ऐसा कठोर कदम उठा रहा है ताकि बेटा मेहनत का मूल्य समझ सके। फिर उसने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि अब आगे वह अपने बेटे को रुपया न दे, क्योंकि उसे सबक सिखाना आवश्यक है। पत्नी ने हामी भर दी। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। रोहित ने
फिर एक दिन रोहन को बुलाकर कहा कि वह कुछ कमा कर लाए यह सिद्ध करने के लिए कि वह अपने पिता से बहुत प्यार करता है। बेटे ने हामी भरी और वहां से चला गया। बेटा सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा और उनसे 500 रुपए मांगे। माँ समझ गई कि रोहित जी ने उसे कमा कर रुपए लाने के लिए कहा है, इसलिए उसने बड़े प्यार से अपने बेटे को कहा कि इस समय उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बेटा मायूस होकर वहां से चला गया। बाबूहरू रोहित विद्वान व्यापारी थे, वहां ले झट्टे बुझे हाले कि पैसा रोहन ले चाहे कमाए को है न। त्यसर्थ उसले आफ्नो छोरोलाई भने, जाऊ त छोरा, यो पैसालाई लगेर कुवामा फालिदेऊ। रोहनले आज्ञाकारी नानी जै भएर झट्टै त्यो 500 रुपियाँको नोट कुवामा हालिदियो। बुवाले उसलाई केही पनि भनेन, तर शयन कक्षमा गएर आफ्नी धर्मपत्नीलाई सबै कुरा बताए अनि बुझाउने कोसिस गरे कि उसले आफ्नो छोराको उज्जवल भविष्यको लागि यस्तो कठोर कदम उठाउन परेको छ जसले छोराले मेहनतको मूल्य बुझोस्। अनि उसले आफ्नो धर्मपत्नी सरितालाई आग्रह गर्यो कि भविष्यमा आफ्नो छोरालाई रुपियाँ पैसा नदिनु, किनभने उसलाई सबक सिकाउन अति आवश्यक छ। पत्नीले पनि झट्टै यस कथनको समर्थन गरी यसै प्रकार कति दिन बित्दै गयो। रोहितले फेरि एक दिन रोहनलाई बोलाएर भने, छोरो, केही कमाएर यो साबित गर कि तिमी आफ्नो बुवालाई औधी नै माया गर्छौ। छोराले पनि हुन्छ भनेर त्यहाँबाट हिँडिहाल्यो अनि सिधै आमाकोमा गएर सरासरी 500 रुपियाँको नोट माग्यो। आमाले पनि बुझिहाल्यो कि रोहितले उसलाई कमाएर ल्याउनु भनेको छ। आमाले पनि छोरालाई भने, बाबु, यति बेला त मेरोमा पटक्कै पैसा छैन। छोरा माया लाग्दो भएर त्यहाँबाट गयो। बच्चो, माँले जब रोहनको पैसे देने से मना कर दिया तो उसे बहुत ठेस लगी और वह रोते रोते अपने दादाजी के पास पहुंचा और रोकर दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने रोहन को चुप कराया और उसे 500 का नोट दे दिया। दादा करमचंद को समझ नहीं आया कि रोहित ने अपने बेटे से क्यों 500 रुपए मांगे। उसने अपने बेटे रोहित से जाकर असली वजह पूछी। रोहित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम सब रोहन के साथ जीवन भर तो नहीं रहने वाले हैं। रोहन आलसी और आराम तलब हो गया है, उसे मेहनत का महत्व पता नहीं है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, वह व्यापार और धन सब खो बैठेगा, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें। दादाजी को अपने बेटे की बात ठीक लगी। उन्होंने रोहित से कहा, मुझे तुम पर गर्व है, तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात को रोहित ने अपने बेटे रोहन को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया। रोहन ने 500 रुपया अपने पिता के सामने रख दिया। पिता को सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने उस 500 के नोट को भी कुएं में डालने को कहा। रोहन को उस 500 रुपए की को कुएं में डालने में कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वह मुफ्त का पैसा था। बाबूहरू नानीहरू, जब आमाले रोहनलाई पैसा छैन भनेर भन्दा भन्ने बित्तिकै उसलाई अत्यन्त दुःख लाग्यो अनि ऊ रुँदै रुँदै आफ्नो बाजेको कोठामा गयो अनि उहाँलाई सबै कुरा वृत्तान्तमा सुनायो। बाजेले रोहनलाई शान्त गरेर झट्टै 500 नोट थमाइदियो। बाजे करमचन्दले बुझ्न नै सकेन कि रोहितले किन आफ्नो छोरालाई 500 रुपियाँ मागे। बाजेले आफ्नो छोरा कहाँ गएर पैसा माग्ने असल कारण के हो भनी सोधे। रोहितले आफ्नो बाबालाई भने, बाबा, हामी सबै रोहनसँग सधैँभरि जिन्दगी बिताउन सक्ने छैनौँ, कारण समय अनुसार सबैले यो संसार त्याग्नै पर्छ। रोहन
अल्छे अनि कामचोर भएको छ। उसलाई परिश्रमको महत्त्वको विषयमा केही थाहा छैन। उसको दिनचर्या यसरी नै चलिरह्यो भने उसको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ। यसरी गर्यो भने उसले हामीले कमाएको धन सम्पत्ति व्यापार सबै गुमाउनेछ। यही सबै कुरा विचारेर नै मैले सम्झे कि रोहनलाई सबक सिकाउन अत्यन्त आवश्यक छ, नत्र भए समय कहिले फर्केर आउने छैन। म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँ सबै मिली मेरो साथ दिनुहोस्। यसैमा रोहनको भलाइ हुनेछ। बाजेलाई पनि आफ्नो छोराको कथन ठिकै लाग्यो। उहाँले रोहितलाई भने, छोरा मलाई तिमीमाथि गर्व छ। तिमी आफ्नो कर्तव्य कति राम्रोसँग निभाइरहेको छौ। म तिम्रो साथमा छु। बच्चो आगे की कहानी में रोहित ने सोचा कि रोहन ऐसे नहीं समझेगा, इसलिए उस पर थोड़ा अनुशासन लगाते हुए अपनी बात कहनी होगी। खूब सोच समझकर रोहित ने अगले दिन रोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि दोनों बार तुमने मुझे अपने बलबूते पर कमाकर रुपए नहीं दिए। इस बार मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम अपने बलबूते पर कुछ कमा के शाम तक मुझे ला कर दो। याद रखना, मुझे भीख नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मुझे तुम्हारे मेहनत की कमाई चाहिए, किसी और से इस बार मत मांग कर लाना। रोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर उठकर बाजार की ओर कुछ कमाने के लिए निकल पड़ा। बहुत जगह उसने काम मांगा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। वह मायूस होकर बैठा था कि इतने में एक महाजन ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा यह सामान मेरी गाड़ी तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे? रोहन ने देखा एक वयस्क व्यक्ति ढेर सारा सामान लेकर सड़क पर खड़े हैं। रोहन ने सोचा कुछ तो मिलेगा। उसने सामान ढोने के लिए हामी भर दी। रोहन को परिश्रम करने की आदत तो थी नहीं। जैसे तैसे उसने सामान उठाकर सेठ की गाड़ी तक पहुंचा दिया। उसका शरीर पसीने से तर हो गया। उसकी गर्दन तथा पीठ में दर्द होने लगा, परंतु उस वयस्क ने खुश होकर उसे 300 रुपए दिए। वह खुशी खुशी वह पैसे लेकर घर आ गया। रात को उसके पिता ने उसे बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? नानी बाबूहरू अगाड़ी को कथा सुनाऊ है? रोहित ले सोच्यो कि रोहन यसरी बुझ्ने खालके छैन, त्यसर्थ अलिक उसलाई अनुशासन भित्र घेरेर नै आफ्नो कुरा बुझाउनु पर्छ। धेरै सोच विचार गरेपछि रोहितले रोहनलाई अर्को दिन आफ्नो समेत डाकेर भन्यो, छोरा मलाई थाहा छ कि दुवै पल्ट तिमीले आफ्नो परिश्रमले कमाएर चाहिँ त्यो पैसा मलाई दिएको होइन। यसपल्ट म तिमीलाई पहिले नै सतर्क गर्दैछु कि तिमी आफ्नै परिश्रमले केही धन कमाएर बेलुकीसम्म मलाई ल्याएर दिनु। ध्यान राख्नु नानी, मलाई चाहिँ कसैले भिख दिएको चाहिँदैन। यसपालि चाहिँ कसैलाई पनि माग्ने काम नगर्नु। रोहनले मनमा नै सोच विचार गर्न थाल्यो अनि झट्टै त्यहाँबाट उठेर बजारतिर लाग्यो। अनि उसले सोच्यो कि आज त केही न केही कमाएर नै घरमा पस्छु। अनेकौँ जगह उसले काम माग्यो, तर उसले केही पनि काम पाएन। ऊ निराश भएर बसिरहेको थियो। त्यति नै बेला एकजना महाजनले उसलाई सोध्यो, के नानी तिमी मेरो सामान गाडीसम्म पुर्याउनमा मेरो सहायता गर्छौ? रोहनले देख्यो एकजना सज्जन व्यक्ति थुप्रो सामान लिएर बाटोमा उभिरहेको छ। रोहनले सोच्यो अलिकति भए पनि केही त पाउँछु। उसले सामान उठाउन स्वीकार गर्यो। बिचारा रोहनको परिश्रम गर्ने बानी त थिएन नै। जसो तसो गरेर उसले त्यो सबै सामान महाजनको गाडीसम्म पुर्याइदियो। उसको शरीर पसिनाले गर्दा लथपथ भइसकेको थियो। उसको मुन्टो अनि ढाडमा भीषण पीडा सुरु भयो। तर ती सज्जनले खुसी भएर रोहनको हातमा 300 रुपियाँ
खमाइदियो। रोहन खुशी भएर त्यो 300 रुपियाँ लिएर घरतर्फ लाग्यो। बेलुका

0: कि उसको बुवाले उसलाई बोलाएर सोध्यो, ए भाइ, आज तिमीले के कमाएर ल्यायो? मेरे प्यारे बच्चों, आगे की कहानी इस प्रकार है कि रोहन आज गर्व से सर उठाकर खड़ा था और पिता के पूछने पर उसने अपनी जेब से 300 रुपये निकालकर उसके सामने रख दिए। पिता रोहित समझ गए थे कि आज बेटा पैसा कहीं से मांग कर नहीं लाया है बल्कि कमा कर लाया है। फिर भी हर बार की तरह उन्होंने रोहन को वह 300 रुपये कुएं में डालने के लिए कहा। लड़के ने अपने पिता की ओर रोष से देखा और कहा, पिताजी, आपको पता है मैंने यह 300 रुपये कितनी मुश्किल से कमाए हैं? मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है और आप कहते हैं कि यह रुपये मैं कुएं में फेंकाऊं? रोहित समझ गए कि इस बार रोहन ने धन का मूल्य भली भांति समझ लिया है। वह जान गया है कि धन कमाना बहुत मुश्किल है। पिता ने बेटे को खुश होकर गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें धन का महत्व समझाने के लिए ही यह सब किया है। अब तुम धन के महत्व को समझ गए हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे कारोबार को अच्छी तरह संभाल सकते हो। मेरो प्यारो नानीहरू, अब अगाडिको कथा यस प्रकार छ। रोहन आज गर्वित भएर उभिरहेको थियो अनि बाबाले सोध्ने बित्तिकै उसले आफ्नो गोजीबाट 300 रुपियाँ निकालेर बुवाको हातमा राखिदियो। बुवाले आज बुझिसकेका थिए कि छोराले आज पैसा कतैबाट मागेर ल्याएको छैन तर स्वयं नै कमाएर ल्याएको हो। तर पनि सधैँ झैँ रोहितले रोहनलाई ती 300 रुपियाँ कुवामा फालिदिन भनी निर्देश दिए। केटोले आफ्नो बुवातर्फ नमिठो अनुहार बनाएर हेर्यो अनि भन्यो, बाबा, तपाईँलाई के थाहा छ कि यो 300 रुपियाँको नोट मैले कति परिश्रम गरेर कमाएको हो? मेरो सम्पूर्ण जीव दुखिरहेको छ अनि तपाईँ आदेश दिनुहुन्छ कि म यो पैसा कुवामा फालिदिउँ? रोहितले राम्ररी बुझ्यो कि यसपालि चाहिँ रोहनले धनको मूल्य के हुन्छ राम्ररी बुझिसकेको छ। बुवाले खुसी भएर छोरालाई आफ्नो आलिङ्गनमा लियो अनि भन्यो, छोरा, मैले तिमीलाई धनको महत्व के हुन्छ बुझाउनको निम्ति यो सब गरेको हो। नानी, अब तिमीले निश्चय नै परिश्रमले कमाएको धनको महत्व बुझ्यौ होला। अब मलाई तिमीमाथि पूर्ण विश्वास छ कि मेरो मृत्यु पश्चात तिमी हाम्रो व्यापारलाई राम्रो अनि कुशलतापूर्वक सम्हालेर अगाडि बढाउँदै जानेछौ। नानीहरू, तिमीहरूले यस कथाको माध्यमद्वारा अवश्य नै बुझ्यौ होला कि नपढी पास हुँदैन अनि परिश्रम नगरी धनको मुख देख्न पाइँदैन। यी नानीहरू, परिश्रम बिना केही पनि सम्भव छैन। नानी बाबुहरू, तिमीहरूले अवश्य नै सुनेकै छौ होला, कमिला मौरीहरूले अथक परिश्रम गरेर बर्खाको लागि आफ्नो भोजन जमा गर्छ। व्यक्तिमा पनि जति नै ज्ञान भए तापनि यदि उसले परिश्रम गर्न सकेन भने उसको ज्ञानको केही महत्व हुँदैन। भनाई सत्य नै छ कि परिश्रम नै सफलताको चाबी हो। बच्चो, आप सभीको इस कहानी के माध्यम से यह तो निश्चय ही समझ लिया होगा कि बिना पढ़े लिखे परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, साथ ही परिश्रम नहीं करोगे तो धनी नहीं बन पाओगे। मेरे नटखट प्यारे बच्चों, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बच्चों, आप सभी ने अपनी नानी दादी के मुख से यह कहानी तो निश्चय ही सुनी होगी कि चींटी और मधुमक्खियां अपने अथक परिश्रम से बरसात के मौसम के लिए अपना भोजन इकट्ठा करती है। मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, यदि वह परिश्रम न कर सके तो उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कहावत है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका विषय था मेहनत का मूल्य। और इस कथा को प्रस्तुत कर रही थी निर्मला अग्रवाल। आशा करती हूँ आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी में बोले जाने वाले शब्द अवश्य ही सीखे होंगे और इस कहानी के माध्यम से आपने मेहनत का मूल्य क्या है ये भी जाना होगा। तो इसी के साथ आपकी संचालिका सुरक्षित आमंग को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेछौँ। समय 4:30 भयो। अब प्रस्तुत छ शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा ज्योति।

0: आकाशवाणी खरसाङ हो। अबको केही समय आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रको समाचार समप्रसारण गरी सुनाउने छौ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद

0: आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ था। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में बदलते वैश्विक माहौल में भारत नेपाल संबंधों पर नए सिरे से विचार विषय पर सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आइची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसोजा कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। महिला सिंगल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसोजा को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताहरू हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेका छौं। एफएम 103.5 मेगाहर्ज लगायत न्यूज ओन एयर मोबाइल एप साथै आकाशवाणीको दार्जीलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्जमा मनोरञ्जनात्मक साथै विविध जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। श्रोता र म उद्घोषक देवेन्द्र, प्राविधिक मित्रहरू फुलन रोय साथै लोपसाङ लेप्चा लगायत प्रस्तुति सहयोगी स्मिताको तर्फबाट सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत तथा सन्ध्याकालीन अभिवादन। त श्रोताहरू, अब आजको यस अधिवेशनको थालनी गरिरहेछौँ हिन्दी फिल्मी सङ्गीतको कार्यक्रम जय जवानबाट। त श्रोताहरू, प्रथम प्रस्तुति स्वीकार्नुहोस् शङ्कर महादेवनको स्वरमा रकफोर्ड चलचित्रबाट। शब्दकार हुनुहुन्छ गुलजार अनि संगीतकार हुनुहुन्छ शंकर एहसान लोई। त श्रोताहरू, स्वीकार्नुहोस् यस गीतलाई।

0: यो आकाशवाणी खरसाङ हो, अब सुन्नुहोस् समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, दिव्यतम अधिकारीबाट मुख्य समाचार सुन्नुहोस्। भारतीय रेलले सोलापुर डिभिजनका 7 स्टेसनहरूमा 200 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको लागतमा इलेक्ट्रोनिक इन्टरलकिङ प्रणाली जडान गर्न स्वीकृति दिएको छ। उत्तर पूर्वी रेलवेको लखनऊ खण्डमा 600 किलोमिटर भन्दा बढी रुटमा कवच 4.0 लागू गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यस परियोजनाको मूल्य 250 करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ। भारतले नेपालका लागि 11 टन राहत सामग्रीको अर्को खेप पठाएको छ। यस सामग्रीमा औषधि, फोरेन्सिक सामग्री, तिर्पल, सरसफाई किट, स्लिपिङ ब्याग र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरू समावेश छन्। विदेश मन्त्रालयले राहत सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको पुष्टि गरेको छ। नेपालका वित्त मन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले भारत र नेपालसँग विद्यमान बलियो सम्बन्धका आधारमा आफ्नो साझेदारीलाई नयाँ रूप दिने अवसर रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्र सेवामा रूपान्तरण गर्ने मन्त्र र यस उद्देश्यप्रतिको अटल प्रतिबद्धताद्वारा परिभाषित आफ्नो सार्वजनिक सेवाको 25 वर्ष पूरा गर्नुहुँदैछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज एउटा भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत उत्तर बङ्गालका 85 व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति पत्र वितरण गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रम सिलगढीमा सिजिएसटी पश्चिम बङ्गाल जोनद्वारा आयोजना गरिएको थियो। लद्दाखको कारगिलस्थित अल इन्डिया रेडियोको क्षेत्रीय समाचार एकाइले सेवा संकल्प अभियान अन्तर्गत एउटा विशेष पोडकास्ट श्रृङ्खला सुरु गरेको छ। यसको पहिलो भाग प्राकृतिक खेती, दिगो र जलवायु मैत्री कृषितर्फ विषयमाथि केन्द्रित छ। पश्चिम बङ्गाल पुलिसले आज कालिम्पोङको पहाडी जिल्लामा एक अवैध अफगानी घुसपेठियालाई पक्राउ गरेको छ। गोप्य सूचनाका आधारमा पुलिसले 28 वर्षीय सैयद विलाल खानलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। हाल रुसको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका भारतीय सेनाका प्रमुख जेनरल धीरज सेठले सेन्ट पिटर्सबर्ग स्थित मिखाइलोभास्किया मिलिटरी आर्टिलरी एकाडेमीको भ्रमण गर्नुभयो। आकाशवाणीबाट मुख्य समाचार पूरा भयो।
0: त श्रोताहरू, अब सुनाउनेछौ हिन्दी सिनेमाका गीतहरू। प्रथम प्रस्तुति स्वीकार्नुहोस् उदित नारायण अनि चित्राको स्वरमा कोही मिल गया चलचित्रबाट। शब्दकार हुनुहुन्छ इब्राहिम अस्क र संगीतकार हुनुहुन्छ राजेश रोशन। त्यसभन्दा पहिले सुनौ यो छोटो सन्देश।
2: জনসেবার 25 বছর উপলক্ষে ও বিকশিত ভারতের সংকল্পকে সামনে রেখে আগামী 17 সেপ্টেম্বর থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে সেবা সংকল্প অভিযান আয়োজিত হবে।
3: দেশপ্রেম ও জনসেবার চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করা এবং বিভিন্ন সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে
2: আশীর্বাদের প্রদীপ, আমার স্বপ্নের ভারত চিত্র সেবা, নম সেবা অজানা কাহিনী, অঙ্গন মিলন সেবা, সেবার কাহিনী,
3: সেবা জ্যোতি যাত্রা, বিকশিত ভারতের সংকল্প, সেবাই আমার যোগদান, সেবা সেতু অভিযান, সেবার রঙে দেশের সঙ্গে, সেবা ফার্স্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ।
2: সাধারণ মানুষকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হবে, সেই সঙ্গে যুব সম্প্রদায় সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে উদ্ভাবনী পরিবেশনা, জনশিল্প, রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সরকারি প্রকল্প, পরিষেবা সংক্রান্ত নাগরিকদের অভিজ্ঞতা ও কাহিনী তুলে ধরা এবং রাজ্যব্যাপী জনসচেতনতা, এই সমস্ত উদ্যোগের সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।
3: আসুন এই কর্মসূচি সফল করে আমরা সকলে মিলে

0: और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े, देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: श्रोताहरू, अहिले सुन्नुभयो हिन्दी सिनेमाका गीत। अब प्रसारण गर्न लागिरहेछौँ कार्यक्रम किसान बानी। सर्वप्रथम सुनौ यो छोटो सन्देश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यो कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सुतारु अब सुन्नुहोस् समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, दिव्यतम अधिकारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। मुख्य समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का

0: सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
2: श्रोताहरू सुन्नुहुँदैछ हिन्दी सिनेमाका गीतहरू। अब अघिल्लो प्रस्तुति स्वीकार्नुहोस् शंकर महादेवन अनि महालक्ष्मीको युगल आवाजमा कुछ न कहो चलचित्रबाट। शब्दकार हुनुहुन्छ जावेद अख्तर अनि संगीतकार हुनुहुन्छ शंकर एहसान अनि लोई।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने

0: पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
2: ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था एनईपी 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
4: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
3: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
5: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
3: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
6: I think close to 8 cargo planes have arrived.
7: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
6: The
1: इस बीच भारत ने

0: नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna Ukai Songar section of Western Railway. 2-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pavan Sehrawat lead India's 501-member contingent during

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 एडी को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन। जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से

के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्म युगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई। आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
1: सरकार को कुछ होने क्या
2: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
1: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
2: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के

0: लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
1: गरुडन नोड़दागा रॉकेट कंफर्म आयतु। हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕ್ಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತನಾಗ್ ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೇ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನಂತನಾಗ್ ಅಂಕುರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಕಾಲಿಚರಣ್ ಔರ್ ಜುರ್ಮ್ ಜೈಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆಯೆ ಹೈ. ಸಿನಿಮಾ ಔರ್ ಕಲಾ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಯೋಗದಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ್ ನೇ ಸಾಲ್ 2025 ಮೇ अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय। अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
2: हंस क्यों रहे?
3: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में।
2: जरा होश में आइए हुजूर, जरा। हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए। यहाँ से भाग निकलते हैं।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गई। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा? कमली। कमली, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है। अच्छा नाम है ना?
2: और बारे पत्रा भाई,
1: चल तू इधर रोज आती है।
3: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
3: अच्छा मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली गल सुन।
3: क्या?
1: तेरी कुमाई हो गई।
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेट मार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूं तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: गजब हो गया।
4: क्या हुआ?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं?
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया।
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण है। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974। कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
5: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है।
6: ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजा बाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए
1: जान लीजिए
0: और फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के, मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट, की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं
3: जी।
2: फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते हैं जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताओ, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने

0: वैसे ही रिकॉर्ड होते थे। बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे। तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरी दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत थी 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरीली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती
1: जी।
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो
1: जी,
0: पलंग हो, इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहां आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती हूँ। क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने वाली औरत हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही हूँ।

0: स्मृति शेष स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध आलेख स्व

और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत है। इसमें आज हम आपको श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटक वायलिन रिसाइटल बाय श्री एस हरिकुमार।
0: श्री एस हरिकुमार केरल के एक प्रख्यात संगीतकार हैं, जिन्होंने कर्नाटक, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में अपनी विशेष पहचान बनाई है। सन 1980 में जन्मे आप 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से वायलिन वादन सीखने लगे और 9 साल की आयु में आपने अपनी प्रथम प्रस्तुति दी। तदनंतर आपने स्वर्गीय अनंत लक्ष्मी वेंकटरामन, स्वर्गीय चालकुडी नारायण स्वामी और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जैसे सुविख्यात संगीत पारखियों के अधीन अपना संगीत प्रशिक्षण जारी रखा। यथाशीघ्र आपके संगीत कौशल की परख हुई और आपको 18 वर्ष की आयु में आकाशवाणी में ए ग्रेड प्राप्त हुआ। संगीत के सफर में तबला विद्वान पंडित किशन महाराज और अनिंदो चटर्जी, साथ ही पाश्चात्य वायलिन वादक जॉन ल्यूक पोंटी के साथ संगति करते हुए प्रस्तुतियां देते हुए आप पूरी दुनिया में छा गए। बाद में आप लंदन गए और वहां आपने फ्यूजन संगीत समूह ब्लू फायर की स्थापना की, जिसके एल्बम ब्रथ टेकर ने दुनिया भर की वाहवाही लूटी। 7 एवं 11 तारों वाले इलेक्ट्रिक वायलिन पर वादन करते हुए सुर, ताल और विभिन्न संगीत शैलियों के सम्मिश्रण में नए आयाम तलाशने वाले आप अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए खूब जाने जाते हैं।
1: श्री एस हरिकुमार इज अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन फ्रॉम केरला हु हैज मेड हिज मार्क अक्रॉस कर्नाटक, हिंदुस्तानी एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशंस। बोर्न इन 1980, हरिकुमार बिगैन लर्निंग द वायलिन फ्रॉम हिज फादर एट द एज ऑफ 7 एंड गेव हिज फर्स्ट रिसाइटल एट द एज ऑफ 9। He went on to receive training from renowned musicians, including late Anandalakshmi Venkataraman, late Chalakudi Narayana Swami, and Dr. L. Subramaniam. His musical accomplishments were recognized early, with Harikumar earning the Akashwani A grade by the age of 18. His musical journey has taken him across the world, with performances and collaborations with celebrated artists such as tabla maestros Pandit Kishan Maharaj and Anindo Chatterjee, as well as Western violinist Jean-Luc Ponty. He later moved to London, where he founded the fusion ensemble Blue Fire, whose album Breathtaker received acclaims in the world music scene. Known for his innovative approach, Harikumar also performs on electric violins with 7 strings and 11 strings, exploring new dimensions in melody, rhythm and cross-genre music.
0: कार्यक्रम में संगत वाद्यकार हैं मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर।
1: In tonight's program, he will be accompanied by श्री चंगना शेरी के आर जैन on the मृदंगम and Shri Anjal H. Krishna Iyer

0: द घाटम। श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन की शुरुआत संत त्यागराज के एक पंचरत्न कीर्तन जगदानंद कारका से कर रहे हैं, राग है नाटा, ताल आदि।
1: श्री एस हरिकुमार बिगिन्स हिज वायलिन रिसाइटल विद जगदानंद कारका, अ पंचरत्न कृति बाय त्यागराजा इन द राग नाटा सेट टू आदि तालम।

0: आगे पेश है कृति सरस्वती नमोस्तुते, जी एन बालसुब्रमण्यम की रचना, जो राग सरस्वती और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज सरस्वती नमोस्तुते इन द राग सरस्वती सेट टू रूपक तालम कंपोज्ड बाय जी एन बालसुब्रमण्यम।

0: अब आप सुनेंगे कृपया पालया, महाराज स्वाति तिरुनाल की रचना, जो चारुकेशी राग और मिश्र चाप ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to कृपया पालया, a composition of श्री स्वाति तिरुनाल in the राग चारुकेशी set to मिश्र चाप तालम।

0: ये था तनिया वर्तनम। इसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर ने। श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन का समापन महाराज स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक तिल्लाना से कर रहे हैं जो धनाश्री राग और आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tani Avartanam played on the Mridangam by Shri Changanasheri K.R. Jayan and on the Ghatam by Shri Anjal H. Krishnayyar. Shri S. Harikumar concludes his violin recital with a Tillana composed by Shri Swadi Tirunal in the Raga Dhanashri set to Adi Thalam.

0: इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुना श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। कार्यक्रम में संगति कर रहे थे मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित हुआ।
1: With that we conclude the violin recital by Shri S. Harikumar in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shri Changanasheri K. R. Jayan on the Mridangam and Shri Anjal H. Krishna Iyer on the Ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आपसे कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
3: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. The Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge ROB on Udhna Ukai Songar section of Western Railway. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have